0: This is Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल. Atoll protected.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती अस

तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ

0: बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
1: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
0: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Breakfast

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio.
3: Laika Radio.
0: Traffic and travel.
4: I'm Greg Edwards. The M40 remains closed southbound this morning between junctions 16 at Henley and Arden and 15 at Longbridge Island near to Warwick. Investigation work underway following a serious accident with queues back to the M42 interchange at junction 3A. Obviously really slow on all the surrounding routes in the area. There's a big queue on the M6 southbound coming down from the M54 through to junction 8 of the M5. Traffic on the M1 is moving without any serious problems. The same goes for traffic on the M69. Off the motorways in Garrett's Green, St Giles Road is still closed after an accident. And that's latest traffic and travel.
0: Laika Radio.
5: Welcome to the jungle.
6: Film, bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
8: अन्ना अभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
9: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में
11: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
12: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
11: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रहे जो हस्बैंड जी.

0: Radio. Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज.

0: लीजिए, लता जी की आवाज में था ये गाना, ठंडी ठंडी हवा में दिल लल जाए। लेकिन फिलहाल तो हम सब ठंडी हवा के लिए तरस रहे हैं। आजकल यहाँ की हवा उतनी ठंडी नहीं है जितनी हुआ करती थी, लेकिन मौसम आज बहुत ही अच्छा है। बट आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा गर्म होने वाला है, तो बस यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए। और हमारे ढेरों साथी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच आपके स्वागत के लिए, आपके साथ देने के लिए असल में ये कहना चाहिए। एजाज जी चश्म से, जासू जी, अर्जन जी, थैंक यू पॉश गर्ल से हमारे साथ जुड़े हैं। कौन जिनका नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप अपना नाम जरूर बताइए क्या है, नंबर एंडिंग 343। हमारे साथ गिरीश जी हैं, भारत में सुन रहे हैं, मिसेस शेख हैं, थैंक यू। ये है लिस्बन पॉश गर्ल से नसीर अहमद भट्टी जी, जी हाँ आपका नाम तो मुझे मिल गया है। रानी जी हैं स्लाव से, थैंक यू। शेखर अनंत जी, तोची जी, भारत जी हमारे साथ हैं, हेतल सोलंकी, बहुत सारे साथी जो रेगुलरली हमारा साथ देते हैं, सत्यनारायण सैनी जी, नरेंद्र पांचाल, जासू जी बहुत बहुत, महेंद्र बजारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है इस शो में। और बस आगे बढ़ जाते हैं और
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचारों का सिलसिला।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बताएं कि बेल्जियम और ईरान के बीच मैच जो था वो ड्रॉ हो चुका है। तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। कतर के गैस प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 54 यानी कि 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। मध्य पूर्व के देशों की यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की बातचीत पर पाकिस्तान और कतर ने साझा बयान किया जारी किया। चलिए विस्तार से खबरें सुनाते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो वहां दर्शन करने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एक वीडियो और उसमें कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया है और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हुए हैं और अब तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक SIT गठित की है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर अमेरिका से चल रही बातचीत के दौरान एक ईरानी सांसद ने कहा है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अंतिम फैसला ईरान करेगा। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरानी संप्रभुता का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तुम यानी कि अमेरिका धमकी दो, हम कार्रवाई करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट ना तो तुम्हारा पर्सनल कैसीनो है और ना ही आधुनिक समुद्री डाकुओं का अड्डा। उन्होंने कहा कि ये ईरानी संप्रभुता का प्रतीक है और इस बारे में अंतिम फैसला ईरान की जनता और उसकी बहादुर सेना के हाथ में है। फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया ग्रुप जी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन शानदार मजबूत गोलकीपिंग और डिफेंस के कारण दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाई। और इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अब भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई है। उधर तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास एक निजी कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में ये जानकारी देते हुए श्रम मंत्री परवेज ने कहा कि सभी मृतक महिला कर्मचारी थीं। मंत्री ने बताया कि अमोनिया गैस रिसाव से 74 यानी कि 74 लोग प्रभावित हुए हैं और इनमें से 42 को सरकारी और निजी अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती किया गया है। बॉलीवुड से खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर रविवार शाम को उनके घर के बाहर धारदार हथियार से हमला हुआ और पुलिस के मुताबिक ये हमला जमीन विवाद के कारण हुआ। हमले में घायल विजेंद्र नाथ तिवारी को पहले गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पटना एम्स रेफर किया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और अब खबर सुनाते हैं कतर से। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित एक गैस प्लांट में बड़ा धमाका हो गया है। इस हादसे में 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। कतर प्रशासन के अनुसार रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक धमाका हुआ और फिर बड़े पैमाने पर आग लग गई। कंपनी ने कहा है कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर भेजी गई और थोड़े समय बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। गृह मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि धमाके में 54 लोग घायल हुए हैं जबकि 18 लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। और मंत्रालय के अनुसार धमाका एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। इससे गैस का कोई ऐसा रिसाव नहीं हुआ है जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारत को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 2026 में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रविवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम के खिलाफ 6 विकेट से अपनी जीत दर्ज की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए और भारत ने पावर प्ले के दौरान सिर्फ 59 रन बनाए। और जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर्स में 4 विकेट गंवाकर जो स्कोर था उसे चेस कर लिया और जीत हासिल कर ली। और आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बताया है कि स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की बातचीत में क्या तय हुआ। स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इस बैठक में लैक ल्यूसर्न समिति जिसे कहा जा रहा है उसे लेकर कतर और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि उच्च स्तरीय वार्ता का पहला सत्र खत्म हो गया है और इस बयान में बताया गया है कि समझौते के आधार पर सबने मिलकर तय किया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी पूरी बातचीत पर नजर रखेगी और देखेगी कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। वार्ताकार इस कमेटी को लगातार रिपोर्ट देंगे, साथ ही अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो खास मुद्दों पर काम करेंगी, जैसे कि परमाणु कार्यक्रम, ईरान पर लगे प्रतिबंध, निगरानी, विवाद और उसको सुलझाने के तरीके। यही थे आज के प्रमुख समाचार। अब समाचार समाप्त हुए।
3: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: ये थी फिल्म राजकुमार जो 1964 में आई थी और मैं देख रही थी कि राजकुमार नाम से कितनी सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में बनी हैं आई थिंक उनमें से सबसे ज्यादा सुपरहिट यही फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर थे और साथ में थी साधना। अपने जमाने के दोनों ही सुपरस्टार्स रहे हैं और इस फिल्म के गाने भी क्या कमाल है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। अभी कुछ गाने मैंने इस फिल्म के आपको सैटरडे को भी सुनवाए थे जब शम्मी कपूर साहब को यादें में याद किया था, लेकिन आज इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली एंड आई एम श्योर उस दिन जो हमारे साथी इस गीत को सुनना चाह रहे थे उन्होंने आज इस गीत को जरूर एंजॉय किया होगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाते हैं और अब लेकर जाते हैं 90s के दौर में, लेकिन उससे पहले आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डाल लें। वजाहत कहते हैं मैंने आपको सुनना शुरू किया है एलेक्सा पर। क्या बात है, एलेक्सा बहुत ही आज्ञाकारी है, हाल बात मान लेती है। जरा कहो एलेक्सा प्ले लाइक अ गोल्ड या लाइक अ रेडियो, फौरन शुरू हो जाता है। तो आई एम श्योर वजाहत आप इंजॉय कर रहे हैं शो को, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू महेंद्र जी, आपको ये गाना बड़ा ही अच्छा लगा। प्रज्ञा कहती है ऋतु मैं भी आपके साथ आ गई हूँ, स्वागत है आपका। विनोद जी हमारा साथ दे रहे हैं, हंसा जी थैंक यू। नरेंद्र पांचाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे दो दो पंखे भेजे, क्या बात है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। लेकिन वैसे थैंक गॉड स्टूडियो में बहुत ही बढ़िया एसी है तो गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन थैंक यू आपके इस प्यार के लिए। हैरो से हमारे साथ जुड़ी है दिव्या जी, चंदू शाह नमस्कार आपको। अरुणा जी कहती हैं 1 बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, थैंक यू। मितुल पटेल, चश्म से अजाज जी हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे गिरीश जी कहते हैं कि संडे को मैं आपको सुन नहीं पाया था लेकिन उसकी कमी आज पूरी हो गई, तो पूरा हफ्ता आनंद में बीतेगा। बिल्कुल कोशिश ऐसी ही रहेगी कि हफ्ता आनंद में बीते, आपका भी और मेरा भी, अच्छे अच्छे गाने सुनाऊं। और हाँ, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि मैं रवि शर्मा नहीं हूं, मैं ऋतु शर्मा हूं। रवि जी हॉलीडेज पर गए हैं, जी हाँ 2 वीक के लिए छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, 2 वीक बाद वो यहाँ आएंगे, तब तक उनकी जगह इस शो में मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी।
2: ये है Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर आप भी हॉलीडेज पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, विजिट कीजिए साउथॉल ट्रैवल या फिर उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। और ये आपके ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट है, 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है, और आप इनके साथ हॉलीडे डील्स बुक कर सकते हैं, दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड। तो बस बिना किसी देरी के उन्हें फौरन फोन घुमाइए 0208-574-8410 पर।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Leica Radio. Welcome to the jungle.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: Pika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टका.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: So gold rate is 102.4 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99. एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99. फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99. लैला बासमती राइस 10 kg 11.99. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99. फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399. पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99. फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. फाल्कन कैश एंड कैरी,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
6: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
7: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
8: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
9: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
8: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
5: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
10: Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed this panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
11: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
12: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी,
11: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk. सखणा रेजो हस्बंड जी.
13: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
16: माँ को बोल की जल्दी मच्छी लेकर आए.
17: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
18: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
16: अरे कहाँ हो तुम?
17: हो आलो आलो
18: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
19: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
20: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
21: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
22: खुद से भी ज्यादा.
20: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
22: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
20: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
23: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
24: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Bhatt. Weekdays at 4 p.m. Like.

आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन। और 11:03 हुए हैं, समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको याद दिला दें कि आज रवि शर्मा जी शो में नहीं है। रवि शर्मा जी 2 वीक के लिए हॉलीडेज पर गए हैं, इसलिए आने वाले 2 वीक मैं ऋतु शर्मा आपका रवि जी के मनोरंजन शो में साथ दूंगी। और अब शुरू करते हैं चिंतन का सिलसिला। कल देखिए फादर्स डे था। मुझे उम्मीद है कि कल आप सभी ने अपने फादर को स्पेशल फील कराया होगा, या फिर आपके बच्चों ने आपको स्पेशल फील कराया होगा। और देखिए आज का चिंतन भी माता पिता को ही समर्पित है। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता और ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। वो ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो ही होते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि जब जब राह में अंधेरा छाया, माँ की ममता ने मुझे राह दिखाया। पिता की उंगली थाम कर जो चला, मैंने हर मुश्किल को चुटकियों में हराया। सुनाती हूँ एक कहानी एक नौजवान लड़के की जिसका नाम था राहुल। एक छोटे से शहर में रहता था राहुल, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने का सपना वो अपने मन में संजोए हुए था, और इसी को पूरा करने के चलते उसने एक नेशनल स्तर की जो कंपटीशन थी उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, और उसको उम्मीद थी कि वो इस प्रोजेक्ट में अगर सफल होता है तो फिर उसे आगे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, अपना सारा ध्यान झोंक दिया, बहुत मेहनत की। लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम दौर में उसका प्रोजेक्ट असफल हो गया, और इस असफलता से राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई, अब वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। बस उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और बाहर निकलना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया, और ये दुख अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। कुछ दिनों तक तो ऐसा चला, लेकिन जब उसके पिता को लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, उसके पिता राहुल के कमरे में आए और राहुल के सिर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, एक असफलता तुम्हारी पूरी काबिलियत तय नहीं करती है। उठो, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। राहुल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रोते हुए अपने फादर से कहा, पिताजी मैं हार गया, अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा बड़ा गुरु भी नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे बताए कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं जितना अपने आप से कर सकता था मैं उतना कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। मेरे पास बड़ी सुविधाएं भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं, बस मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया हूं। इस तरह की बातें वो अपने पिता से करने लगा। उसकी बातें सुनकर पिता अंदर से तो बहुत दुखी थे, लेकिन बाहर से उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया और मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं है राहुल। जब तुम चलना भी नहीं जानते थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभलना सिखाया, और जब तुम गिरते थे ना तो मैंने तुम्हारे उंगली पकड़कर तुम्हें दोबारा खड़ा होना सिखाया, और जब तक हम तुम्हारे साथ है ना तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। हमारी दुआएं, हमारा विश्वास हमेशा बेटा तुम्हारे साथ है। माँ ने भी आगे आकर बेटे के आंखों आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी हर कोशिश में हमारा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और माँ बाप की ऐसी बातें सुनकर राहुल को बहुत हिम्मत आई। उसे समझ आया कि जिस प्रेरणा के लिए, जिस शक्ति के लिए वो पूरी दुनिया में भटक रहा था, वो असल ताकत तो उसके सामने खड़ी थी और वो थे उसके माता पिता, जिनको अपने बेटे की क्षमता पर पूरा विश्वास था। वो ही उसके मार्गदर्शक थे, उनके दोस्त थे और उस समय तो उनके ईश्वर भी थे। उनके यानी कि अपने माता पिता के इस अटूट विश्वास के साथ राहुल ने दोबारा काम करना शुरू किया और अगले ही साल दुगनी मेहनत के साथ अपने आप को तैयार किया। और जिस कंपटीशन में वो पिछले साल सफल नहीं हो पाया था, इस बार उस कंपटीशन में उसने पहला स्थान हासिल किया। और जब सफलता के मंच पर खड़ा हुआ और जब राहुल को ट्रॉफी मिली, तो उसने सबसे पहले वो ट्रॉफी अपने पेरेंट्स के हाथ में सौंपी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि दुनिया में अगर मेरा कोई है तो मेरे माँ बाप हैं। माता भी, पिता भी, भगवान भी, दोस्त भी, बंधु भी। अक्सर कभी कभी हम हो जाते हैं परेशान और उस समय हमें अपने माँ बाप की बातें भी समझ में नहीं आती हैं। हमें लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको क्या आता है, इनको क्या पता हमें कितनी परेशानी, हमको कितना दुख है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको बचपन से पाला है, आपकी हर बात को बिना कहे जाना है, आपकी माँ ने आपके दुख को बिना कहे समझा है, वो माँ बाप बेशक आपसे ज्यादा जानते हैं और आपके लिए क्या सही है उनसे भला कोई और क्या जानेगा। उनसे अच्छी सलाह आपको कहीं और से नहीं मिलेगी।

0: छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि कभी कभार हो जाता है, हमें ये लगता है कि हम अपने माता पिता से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जीवन का जो अनुभव आपके पेरेंट्स आपके साथ साझा करते हैं वो शायद आपके पास नहीं होता, और वो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बदले में आपसे चाहिए थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार। तो बस पेरेंट्स अनमोल होते हैं, हमेशा किसी के भी पेरेंट्स उनके साथ हमेशा के लिए नहीं रहते, एक ना एक दिन छोड़ के जाने पड़ता है, और तब आप शायद पछताएं कि हाय हमने ये क्या कर डाला। तो इस पछतावे से बचने के लिए अगर आप अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बस यही था आज के चिंतन का एक छोटा सा मैसेज। चिंतन हमेशा आप सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे रवि शर्मा जी के साथ, लेकिन आज इस शो में ऋतु शर्मा है आपके साथ, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। ललित छत्रिसा जी कहते हैं चिंतन तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ हमें गाना भी पसंद आया। तो आपको बता दूं कि ये जो गाना था मैंने फिल्म हम साथ साथ से लिया था, एक पारिवारिक फिल्म थी, सूरज बड़जात्या ने जिसे बनाया था, अच्छी फिल्म थी, अच्छी कहानी थी, और उसी से लिया था ये अच्छा सा गाना। थैंक यू सलमा जी, थैंक यू गिरीश जी चिंतन को पसंद करने के लिए, किरण जी हरो से, फतेह पटेल जी, भारती जी, जगदीश जी बुशी से, जासू जी, हरविंदर जी, महेंद्र बजारिया, राजीव पटेल जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। उल्लास जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश सुथार नॉर्थ होल्ड में हमारे साथ हैं, ज्योति गिरीश शाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ढेरों मैसेजेस आए हैं, आप सभी चिंतन पसंद कर रहे हैं इसीलिए चिंतन इतने सालों से चला आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं दो बैक टू बैक गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं वाया एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। आज 1 pound आपको देगा 124.55 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया एसबीआई ब्रांच जैसा कि मैंने आपको बताया। और एंड ऑफ जून यानी कि जून के खत्म होने से पहले पहले आप अगर 1000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 75 pounds का वाउचर मिलेगा एवरी डे, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। Terms and conditions भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि अगर आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और जब आप मेंशन करेंगे लाइका। और आपको बता दें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स खेलेंगी, ये मैच शुरू होगा शाम को 6 बजे से, और फ्रांस और इराक की टीम्स खेलेंगी, ये मैच शुरू होगा रात को 10 बजे से।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है Leica Radio.
4: लिस्टर इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
4: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 020 3963575757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Welcome to the jungle.
6: Film bilkul fake.
8: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
8: स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
10: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
11: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में.
13: जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
14: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
15: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
16: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
17: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
16: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
13: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app.
18: Part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
21: LemFi means quicker and safe way to send money.
22: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
21: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
22: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LemFi mobile app today.
23: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
24: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
25: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't have time for quick reply. Affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: On this week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sport.
26: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Stephen Gerrard was my role model. So now being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
2: Leica Radio.
1: Let's return to the biggest hits back-to-back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio, with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
27: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन कार्यक्रम जिसमें आज ऋतु शर्मा है आपके साथ। और आपने सुना आई नो फिल्म का गाना जिसमें जैकी श्रॉफ थे, अमृता सिंह थी और साथ में थे जूही चावला। एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुभाष घई जिन्होंने जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया था, उनकी फेवरेट पसंदीदा अगर कोई इंसान था तो वो थे जैकी श्रॉफ। तभी तो देखिए, हीरो तो उनकी फिल्मों के आते जाते रहे, लेकिन उनकी ज़्यादातर सारी की सारी फिल्मों में जैकी श्रॉफ हर फिल्म में नज़र आए। यहाँ तक कि जब उन्होंने देवदास बनाई उसमें भी उन्होंने जैकी श्रॉफ को एक रोल दिया था। तो जब सुभाष घई साहब से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स मुझे पसंद हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और बहुत ही सिंपल इंसान रहे हैं, गरीबी से उठकर उन्होंने कहाँ क्या मुकाम हासिल किया है, काबिले तारीफ है। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप ये गाना सुन रहे थे ना, तो मैं रॉयल चाय पी रही थी। मतलब आजकल इतना मजा है स्टूडियो में, हमारे यहाँ रॉयल चाय की मशीन लग गई है, उसमें आप इलायची वाली चाय ले लीजिए, कड़क चाय ले लीजिए, मसाला चाय ले लीजिए या फिर सिंपल चाय ले लीजिए। मतलब अब आपको चाय के लिए मेहनत नहीं करनी है। और अगर आपको भी चाय बनाना बोझ लगता है और आप को लगता है कि यार क्या, पहले चाय बनाओ, मसाला कूटो, ये डालो वो डालो, घंटा भर में चाय बनेगी, तो आप भी रॉयल चाय की मशीन लगवा लीजिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा और अब घर से भी अच्छी चाय हमें यहाँ स्टूडियो में मिल जाती है, तो मतलब मज़ा दोगुना हो जाता है। सो थैंक्स टू रॉयल चाय, मैं बिल्कुल दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी स्टूडियो में आती हूँ तो मुझे एक मज़ेदार चाय का कप मिल जाता है जिससे अंदर तक आत्मा प्रसन्न हो जाती है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ।
0: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DerryValley.net.

0: और ये गाना मैं डेडिकेट करूंगी रॉयल चाय को, क्योंकि उनके साथ शो करने का मजा ही अलग होता है। तो वंस अगेन थैंक्स टू रॉयल चाय, और यही कहूंगी कि अगर आप भी चाय बनाने के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रॉयल चाय की मशीन अपने घर में लगवा लीजिए। एनीवेज, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू मानसी जी, ये गीत आपने पसंद किया है, थैंक यू एजाज जी चश्मे में हमारा साथ दे रहे हैं, ज्योति गिरीश शाह बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, एंड कंवल जी आपका मैसेज मिला है और आपने बिल्कुल सही लिखा है कि देवदास संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, सुभाष घई ने नहीं। वो तो मुझे पता है, मैंने तो सुभाष घई का नाम इसलिए लिया था ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरा शो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू आपके मैसेज के लिए, थैंक यू वीरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कल फादर्स डे था और आई एम श्योर आप सबने धूमधाम से मनाया होगा। थैंक यू अर्जुन जी, प्रकाश सुथार जी एंड जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस साथ यूं ही देते रहिए, क्योंकि इस तरह के गाने तो मैं आपको सुनवाती ही रहूंगी। और अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि आज रवि शर्मा की जगह ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
5: Leica Extra Podcast Update.
0: तो लीजिए, आप हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे गाने तो सुनते ही हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स सुनने की आदत है और पसंद है तो आपके लिए है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, जिसका नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इस बार का टाइटल है साउथ एशियन वेमेन इन स्पोर्ट्स, और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, अमेजोन पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी पर भी आप जाकर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं।
5: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
6: We hit
7: Leica Radio.
8: South on travel, 7 days a week. South on travel, 24 hours a day. We're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
13: Unko tumhe pehla thi aawaz chho.
14: Aawa itle keva.
12: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
14: Maro baap banvani koshish karat tu, buddhi vechiya vese tu. Are jindagi evi mauj thi jeevje, ki jindagi khud tane aavi na puche.
12: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
14: So thai jaye, jindagi once more.
15: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Strathbelease, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
16: Radio partner Leica Radio.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
18: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 700 £111,000.
18: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
17: high appreciation
18: in Dubai.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
0: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
0: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: New hits on Leica Radio.

0: इस खूबसूरत गीत को गाने के लिए किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था और इस धुन को बनाया था राजेश रोशन ने। और वेमली से इंदिरा जी का मैसेज आया है, आपने लिखा है कि ऋतु रियली नाइस प्रोग्राम, आपको मजा आ रहा है, थैंक यू। और आपने ये भी लिखा है कि आज आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हैं और आप चाहती हैं कि कोई गाना मैं आपको डेडिकेट करूँ, तो ये गाना छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आपको डेडिकेट करते हैं। और आपके साथ साथ भारती जी, आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगा, मानसी जी आपको भी ये गीत पसंद है, तो चलिए आपके साथ साथ उन सभी को जिनका ये फेवरेट गाना है इंक्लूडिंग मी, सबको ये गाना डेडिकेट करते हैं।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टका।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of

0: जिंदगी का बहार।
1: आई मिलन की बेला फिल्म से था ये गाना लता जी और रफी साहब की आवाजों में, और उससे पहले आपने शैलेंद्र सिंह और लता जी की आवाज में बॉबी फिल्म का गीत सुना। यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। शेखर अनंत जी, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं। ओ सनम तेरे हो गए हम। गिरीश जी कहते हैं बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, ये गाना मेरे नाम कीजिए। लीजिए, हमने किया आपके नाम। जासू जी कहती है प्लीज ये गाना मेरे नाम करो। चलिए, आपको भी दिया। ज्योति गिरीश साहब, ये गाना आपके नाम पर भी जाता है। और रजिंदर राज जी, क्या बात है, आपने लिखा है हस्बैंड डे आने वाला है, और ये हस्बैंड डे नहीं है, ये है सताए हुए हस्बैंड डे, यानी कि 27 जून को आपने लिखा है कि सताए हुए बेचारे हस्बैंड्स। अब देखिए, मुझे तो नहीं पता कि 27 जून हस्बैंड डे मनाया जाता है, लेकिन मैं गाना सुन रही थी, झूठ बोले कौवा काटे, उसमें एक लाइन थी, तू मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा। इस गाने को सुनकर मुझे ख्याल आया कि 70s में ये गाना जिसने लिखा होगा लिख दिया, लेकिन क्या आजकल के जमाने में किसी की हिम्मत है कि इस तरह की लाइन लिख दे कि तू मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा। संभव ही नहीं है जी, आज के जमाने में कोई ऐसा कह ही नहीं सकता, जमाना बहुत बदल गया है। और इस गाने को सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। एनीवेज, गाने ऐसे हैं, बोल कुछ भी हो, लेकिन ये गाने हमारे दिलों में रच बस चुके हैं। और आज ऐसे ही कुछ गाने मैंने और भी चूज किए हैं, एक एक करके आपको सुनवाती रहूंगी। आपको बस हमारे रेडियो सेट्स के पास रहना है, कहीं नहीं जाना है। और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज £1 आपको देगा 124.85 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना होगा। लेकिन इस जून के एंड से पहले आपको £75 का वाउचर मिल सकता है एवरी डे when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Lekin terms and conditions bhi apply rahengi.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Welcome to the jungle.
3: Film, बिल्कुल fake.
5: हमारे film army वाली.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: Danger, एकदम real, और survival skills zero.
5: और star cast है.
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में?
10: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टरमा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
11: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
10: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टरमा बे शानदार शोज बपोरे 2:30 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सखना रे
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: चलथल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
14: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
9: डेजर्ट सफारी,
14: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
9: चलथल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
14: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल चलथल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
15: Safo Travel, at all protected.
16: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
17: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LAIKA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
18: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
15: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी और मुकेश जी की आवाजों में था ये क्लासिक गाना जो हम सभी का फेवरेट है, पिक्चराइज ऑन जितेंद्र और बबीता। और आप सब शायद अब तक जान गए होंगे कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक जितेंद्र हैं, और इसीलिए हर शो में कम से कम एक गाना तो आप उनका सुन ही पाएंगे अगर जितेंद्र आपके फेवरेट एक्टर हैं तो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So विजय घोनोवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, स्वागत है आपका इस शो में, एंड भावना आपका भी स्वागत है। चलिए ये गाना आपके नाम करते हैं, और आप कहती हैं चाहे तू माने चाहे ना माने, आई लव दिस सॉन्ग। चलिए आपको डेडिकेट किया।

0: लीजिए लता जी और किशोरदा की आवाजों में सिलसिला फिल्म से था ये गाना. और हमारी आंटी जी कहती हैं कि थैंक यू ऋतु बिग बी साहब का गाना बजाने के लिए. तो इस गाने में तो शशि कपूर और जया बच्चन थे, अमिताभ बच्चन नहीं थे, लेकिन चलिए फिल्म तो उनकी थी इसलिए हमने ये गाना आपके नाम पर किया. और आपके साथ साथ और भी ढेरों मैसेजेस आए हैं जिनका जिक्र करती हूँ.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो सतीश मित्तल, सुरेश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए कि आप मेरा साथ आपको पसंद आ रहा है, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, बातों को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए. विजय गुनोवा जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और बिल्कुल आपको मैं थैंक यू कहूँगी क्योंकि आप सब इतने प्यार से अपना समय निकाल कर मुझे मैसेजेस लिखते हैं और हमारा शो सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. और भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए भी. और अब मैं आपको याद दिला दूं कि आज तो है 22 जून, लेकिन 25 जून को आने वाली है निर्जला एकादशी. ये एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे बहुत सारे साथी सेलिब्रेट करते हैं. तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो है इस बार थर्सडे 25 जून को. कई बार मिस हो जाती है इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूं. और ये एक बहुत बड़ी होती है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन व्रत में से एक मानी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में आती है. और निर्जला, जैसे कि नाम से ही पता है, निर्जल यानी कि इसमें आप पानी नहीं पीते हैं. और आपको पता होगा किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो साल में जितनी भी 24 एकादशी हैं उन सभी के व्रतों का फल आपको मिल जाता है, उन सभी के व्रतों का पुण्य आपको मिल जाता है. कुछ लोग इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, कुछ इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, लेकिन ये व्रत निर्जला एकादशी का होता है. और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं भी हैं. हाँ, किस दिन सुनवाऊंगी, आज इतना समय नहीं है, लेकिन 25 को हम फिर से मिलेंगे ना, हाँ तब बताऊंगी कि ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं और मैं इसको देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ. हमारे राम, यस, लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिला है माइथोलॉजिकल स्टेज शो जो होने वाला है, जिसका नाम है हमारे राम. और ये शो होने वाले हैं 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में लंदन एवेंटिम अपोलो में. आशुतोष राणा इसमें रावण बने हैं और राहुल बुच्चर ने राम का किरदार निभाया है. और इसी शो के चलते मेरी बात हुई है आशुतोष राणा से और उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि इस शो में क्या है, उन्होंने रावण का कैरेक्टर क्यों चुना और इस शो में हमें जो राम है उनका कैरेक्टर और रावण का कैरेक्टर एक अलग नज़रिए से देखने को मिलेगा. तो बहुत सारी बातें हैं जो इस शो में हमें देखने को मिलने वाली हैं और लाइव जिसमें कोई रीटेक नहीं होता उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो आई एम सुपर एक्साइटेड, कांट वेट कि ये शो जल्दी से हो. और अगर आपने भी इसके टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी से टिकट बुक कराइए क्योंकि ये सिर्फ 9 से 12 जुलाई तक ही होगा. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. और बहुत जल्द आपको आशुतोष राणा के साथ हुआ इंटरव्यू भी सुनने को मिलेगा.
1: Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए क्या खूबसूरत गाना आपने सुना आशा जी और किशोरदा की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द मूवी बातों बातों में। और अब कोई और है जो मेरे फेवरेट है, मेरे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी।
1: Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी हमारे साथ हैं। कमल जी बताइए आज क्या है आपके पास।
3: रितु जी पहले तो गुड आफ्टरनून, क्या आवाज है आपका, ब्यूटीफुल वॉइस।
4: थैंक यू।
3: एनीवे क्रिकेट तो अभी बहुत यू नो इट्स गेटिंग वेरी टफ, स्किल

0: Day. Oh so God. Anyway, great Rituji, keep the good work up and see you soon. Hopefully see you in one of the matches.
1: Definitely, I would love to. Thank you.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: तो भाई समर आ चुका है और अगर आप हॉलिडे पर जाने की सोच रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथॉल ट्रैवल, और उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर। साउथॉल ट्रैवल 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड जीत चुके हैं और आप उनके साथ हॉलिडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है। तो बस हॉलिडे जाना है तो फोन घुमाइए साउथॉल ट्रैवल को।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
3: The gold rate is 102.2 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: तो लीजिए अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पर आपका साथ देंगे बाली ब्रह्मवर. मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.
5: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. LEICA Gold in London, the Midlands and Manchester.
4: LEICA Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है.
9: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
10: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
9: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
11: दुल्हन के लिए मेकअप.
9: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
12: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
12: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162-167-225. We're at all protected.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
14: एक ऐतिहासिक दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
15: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट. Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
2: Lester Mellor is back with exclusive radio partner LEICA Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
1: ये है LEICA Gold 2.

0: पूछूं?
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
2: महाराज?
1: Yes.
2: योगी?
1: That's right.
2: Welcome.
1: Thank you.
2: Welcome.

जो लट लहराई, क्या लिरिक्स लिखी अंजान जी ने और कल्याण जी आनंद जी ने, वो ठेका बताया तो पता चल जाता है कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। फिल्म है कंगन, जिसमें हीरो थे संजीव कुमार और हीरोइन थी माला सिन्हा, अशोक कुमार जी भी थे, अरुणा ईरानी वगैरह वगैरह सब थे। आई होप यू एंजॉइंग दीज सॉन्ग्स। नेक्स्ट वन खानदान।

0: हाँ वो तो कब की बैठ गई थी गाड़ी में, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा था। एनीवे सॉरी, वो गाना थोड़ा सा पकाऊ लगा आपको, लेकिन ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं जो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ दैट इज़ अ ट्रिब्यूट ऑफ शब्द कुमार। शब्द कुमार वॉज अ राइटर एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर हैविंग रिटन सच वंडरफुल डायलॉग्स ऑफ मैनी फिल्म्स, जैसे कि बालिका बधू। वो गाना आपने जो पहला गाना सुना था, कितना सुरीला और कितना खूबसूरत गाना अमित कुमार ने गाया, जो बालिका बधू 1976 का गाना, बड़े अच्छे लगते हैं वो नदियाँ। दैट वॉज रिटन बाय आनंद बख्शी एंड आर डी बर्मन का संगीत था। ये दूसरे गाने में तो अन्नू मलिक का संगीत था और उन्होंने ही गाया था, लेकिन बात ये है कि बालिका बधू, इंसाफ का तराजू, आज की आवाज, फिर दूसरी एक फिल्म है जवाब, देन मेरा साथी, इंसाफ की पुकार, गंगा तेरे देश में, फरिश्ते, इंसाफ की देवी एंड ये फिल्म मिस 420। इन सब के जो डायलॉग्स लिखे थे वो डायलॉग के लिखने वाले थे शब्द कुमार, एंड ही पास्ड अवे ऑन 21st of June 2008। इसलिए हम उनकी 18th डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग एक्टर एक्ट्रेस, कुछ फेमस प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, सबको हम याद करते हैं, सिंगर्स को याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डायलॉग राइटर भी एक ऐसा इंसान होता है जो बातों बातों पे जब अच्छा डायलॉग बनता बचता है तो बोला जाता है सॉरी एक अच्छा डायलॉग बोला जाता है फिल्म में, तो फिर लोग तालियां बजाते हैं। दैट वॉज दिस मैन हु हैड रिटन सम फैंटास्टिक डायलॉग्स। इंसाफ का तराजू क्या फिल्म थी, उसके अंदर इन्होंने स्टोरी भी लिखी, इंसाफ का तराजू, स्क्रीन पे भी लिखा एंड डायलॉग्स भी लिखे। जी हाँ, इतनी खूबसूरत फिल्म थी वो इंसाफ का तराजू, विच ऑब्वियसली वॉज एन अवॉर्ड विनर। B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, जीनत अमान, राज बब्बर, दीपक पराशर, ये सब, आई मीन इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग फिल्म, यू नो, इट वॉज अ बिजनेस मैन हु इज अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग अ ब्यूटी क्वीन एंड शी लेटर एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिम एंड अरेस्टेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फिल्म थी इंसाफ का तराजू, उसके डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और सब इन्होंने लिखे थे शब्द कुमार, तो उनको क्यों ना हम याद करें आज के दिन। जी हाँ, फिल्म जवाब, उसमें भी द एक्टर वॉज राज बब्बर एंड विकास आनंद एंड राज भारती, दैट वॉज अनदर गुड प्रोडक्शन देयर। सो याद करते हुए शब्द कुमार, 18th डेथ एनिवर्सरी, इनकी सारी फिल्मों के बारे में मैंने कुछ बताया आपको, एंड फरिश्ते फिल्म जो थी 1991 की, उसमें इन्होंने स्टोरी जो थी वो लिखी थी, मिस 420 की स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की थी और डायलॉग्स भी। सो वी रिमेम्बरिंग नन अदर देन शब्द कुमार हु पास्ड अवे इन मुंबई ऑन 21st of June 2008। आगे जाते हुए हम दूसरे एक खूबसूरत एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को याद करेंगे। उनका नाम था जुगल किशोर। ही बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, ठाकुरवाड़ा नियर पलमपुर इन हिमाचल प्रदेश। यू नो, ही लॉस्ट हिज फादर एट अ वेरी यंग एज एंड बिलोंगिंग टू अ वेरी पुअर फैमिली ही वेंट टू बॉम्बे। मैं जुगल किशोर जी की बात कर रहा हूँ, एंड ही मेड अ फ्यू पंजाबी एंड हिंदी फिल्म्स एंड अचीव द बिगेस्ट सक्सेस इन हिज सिल्वर जुबली मूवी दादा, एंड ही कुड नॉट एंजॉय द सक्सेस ऑफ द फिल्म दादा एज ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक इन 1979। ही इज ऑलवेज मिस्टेकन विद राज कपूर्स अंकल जुगल किशोर मेहरा, बट दैट इज अनदर पर्सन ऑल टुगेदर। वी आर गोइंग टू डू अ ट्रिब्यूट of Jugal Kishore ji next.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 124.85 Indian rupees. 124.85 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Kya games thi over the weekend? Uruguay versus Cape Verde. That was 2 each. And is game mein there was so much to see and enjoy. And surprising it was the results. And then Belgium versus Iran was 0-0. Spain versus Saudi Arabia was 4-0. That was a disaster there. And New Zealand versus Egypt, where Egypt won with 3 goals. Against New Zealand's 1 goal. And today, 6 p.m. is Group J, Argentina versus Austria. And 10 p.m., Group I, France versus Iraq. So it's going to be quite challenging. It's all developing from group stage. Abhi aista aista khatm hone wala hai, and it'll come to the 32. 32 groups mein jitne groups hai A to L tak, usme se 32 teams baki rahegi. Wow, that's gonna be amazing.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
4: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Welcome to the jungle.
6: Film? Bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: और स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
9: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
10: मैं किस लिए फिल्म में.
6: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click RiffGoTheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
13: Radio partner Leica Radio.
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Pepe's Piri Piri.
2: Curry is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
3: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: फिल्म दादा। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
1: ये आपने गाना जो सुना वॉज फ्रॉम फिल्म दादा, एंड दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म मेड बाय नन अदर देन जुगल किशोर। जुगल किशोर जिन्हें बड़ी फिल्में डायरेक्ट की थी, इंक्लूडिंग लाल बंगला, जहाँ पे वो गाना था ना, मैंने आपको मुकेश जी का गाना जो सुनाया था, एंड दैट वाज चांद को क्या मालूम। सो वो गाना जो था वॉज फ्रॉम फिल्म लाल बंगला, एंड लाल बंगला में उषा खन्ना ने संगीत दिया और इंदी वर्जी ने गाना लिखा। और दिस सॉन्ग, दिस पिक्चर वॉज एक्चुअली डायरेक्टेड बाय जुगल किशोर जी, एंड इट वॉज द सॉन्ग वॉज ऑल्सो पिक्चराइज्ड ऑन हिम बिकॉज ही हैड done a small role in that particular film. It was small but a special role. And then Dil Ke Tukde, abhi aapne Yasudas ji ka gana suna. It wasn't picturized on him, but then the music was Usha Khanna's, and Kulwant Jani ne likha tha. Film Dada 1979 ki, and it was a silver jubilee movie Dada, but he could not enjoy the success of Dada as he died of a heart attack in 1979. We are remembering Jugal Kishore ji on his 47th death anniversary. He was born in Palampur, which is in Himachal Pradesh. So remembering none other than Jugal Kishore ji, film Dada 1979, film Jagga 1964, then dusri ek thi दो खिलाड़ी 1976 की, खोज फिल्म 1971 की, ऐसी कई फिल्में, और एक फिल्म थी सबक, SABAK, एंड सबक फिल्म की जो कहानी लिखी थी वॉज रिटन बाय जुगल किशोर जी। सो एन एक्टर, अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर एंड अ राइटर, हाउ कैन लाइक अ गोल्ड फॉरगेट जुगल किशोर।
2: On this week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sports.
3: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Stephen Gerrard was my role model. So now being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica Radio across the Midlands. By mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.325, Indian rupees 125.33, Pakistani rupees 368.57, Afghan Afghanis 84.30, and Kenyan shillings 171.51.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £101.87 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 2.

0: 99 Falcon Red Lentils 1.5 kg 24399 Parle G Multipack Biscuits 799 gram 199 Falcon Lemon Juice 250 ml 341 Falcon Cash and Carry
1: 82 Assistant Street LE12JU Yeah Rowlatt Hill LE54UN
0: Big deals big savings while stocks last
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
0: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट Location is everything, and this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
0: high appreciation
3: in Dubai.
4: 105 shows pura karya pachi, have Leicester ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
5: Jay's Entertainment line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
4: Reena Shah ane Samir Shah sathe hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows. Bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B 07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834833 2249 athwa eventbrite.co.uk sakhna rejo husband ji
6: packed for the trip gifts passport
7: check just dreading that phone bill when I get back from India roaming is a nightmare
6: mate you're doing it wrong just get Simzy it's an eSIM app you buy a data plan for India starting at just $5 no swapping plastic sims no kiosks
8: plans for Asia Europe and beyond search simzy.com that's SIMZY.com
9: T's and C's apply.
10: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
12: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4-5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
0: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime location
0: High appreciation
3: In Dubai
13: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116-471-0697 or email sales@laikamedia.co.uk. This is Laika Radio across the Midlands.

0: What a beautiful song. Film मनोकामना 1980 की, बपीदा बपी लहरी जी का संगीत और इंदिवर की लिरिक्स. हम एक्चुअली याद कर रहे हैं राजकिरण. राजकिरण वॉज बॉर्न ऑन 17 June 1949. ही इज नाउ 77 ईयर्स यंग. लेकिन 2003 से लापता. इन्होंने 1973 से 2003 तक बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. 100 फिल्मों, मोर देन 100 फिल्म्स. एंड अनदर फिल्म अर्थ, जिसका गाना मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, जगजीत सिंह का गाया हुआ. रिमेम्बरिंग ऑफ कोर्स राजकिरण. जहां भी हो खुश रहो एंड आई होप यू आर हेल्थी एंड फिट.
1: बैक टू बैक हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: राजकिरण, द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यू. अगर आ जाओगे सबके सामने सेलिब्रेशन होगा.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
1: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
2: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
3: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
4: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
3: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
0: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक UK एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन ऑल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA।
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02033-773-6333। Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Lester Mella is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
0: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
8: जगदात्री,
0: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
8: माला ले आना। लाया जी।
0: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
9: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
0: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
7: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
10: Leica Radio.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: 4 beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: That Leica Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट भी गया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: Oh, damn.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And the latest on your currencies as they stand right now. India rupee stands at 125.28. Pakistan rupee 368.42. Sri Lanka rupee 442.88. And the Bangladesh taka 162.72. Afghani 83.92. And the US dollar $1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: Right, that's it from me.
1: Ranch Patton.
0: I'm off out of here. Don't forget that the Hungama continues with none other than Radio Wally here on Leica Radio after 7 o'clock on Leica Radio Greater London and Leica Radio Midlands. On Leica Gold and Leica Radio Greater Manchester, it is ushering it in for Anisa Nasif with the evening show. Well, I'll be back tomorrow at 4 o'clock. Please look after yourselves. I need you. I need you on the radio with me. Stay hydrated. Keep well and look after the elderly and everyone else around you. Bye.
2: Leica Radio.
1: Traffic and travel.
3: I'm Simon James. Quite a few problems for the M1. Northbound is now completely blocked from the Catthorpe interchange to Lutterworth, junctions 19 to 20. That's all because of a vehicle fire. Looks like southbound approach as well, as two of the four lanes closed. And we're also two lanes down if you're heading into Warwickshire on the M6 south from Nuneaton to the M69 at Coventry, junction 3 to 2. There's been an accident. Not too bad so far for the M42 roadworks near Birmingham Airport between junction 6 and 9. Still coping fairly well. And just the usual delay still between Little Over and Derby. It's the Burton Road, A5250 between Horwood Avenue and Stonehill Roads. There's temporary lights. That's the latest traffic and travel.
1: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
7: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
8: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
9: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
10: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
9: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
6: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।

0: beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: does he score on the vocals of this one? Gal dil di. Chai, kya gaana hai?
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: So the score as it stands currently, Argentina 2, Austria still to score. It's anyone's game, but Messi's definitely on fire. Let me know what your thoughts are and stay tuned to the network as we bring you all the updates.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Easy listening with Radio Wally. Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Welcome to the jungle.
3: Film? Bilkul fake.
2: Hamari film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
2: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
7: मैं किस लिए फिल्म में.
8: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bangla and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
9: Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July.
8: Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
10: रेडियो पार्टनर Leica Radio.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
12: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 Double Bonded Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn. LemFi means quicker and safe way to send money.
14: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
13: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code Leica.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
15: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
16: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
17: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
16: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
17: दिल तो टूट भी गया
16: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
18: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
16: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
19: You know how fans shout at football matches?
20: Oh, wake up!
19: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Radio. Pay close attention and name the film of this crowd.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गोल्ड।

0: दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
2: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
1: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116-471-0697.
2: Or sales at leicamedia.co.uk.
3: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Radio. साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Kuch exciting khane ka man hai? Toh aao, Egg Junction Leicester. Yaha milega sizzling egg keema, flavorful boil tikka rice, aur special veg starters. Sab ke liye kuch na kuch hai. 62-64 Belgrave Road, LE4-5AS par. Chahe dine-in karo, take-away lo, ya Uber Eats aur Deliveroo se mangwao. Call kijiye 0116-332-5100. Egg Junction, जो Wembley और Kingsbury में तो है, अब Leicester में, जहां हर bite है extraordinary.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
5: Leica Radio.
1: Time for another Leica Love Classic.

0: ये है लाइका रेडियो सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Listen back to your favourite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
5: Like a radio.
0: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.